12 माह गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज बाणी 12 रुत्तां साडी जीवन शैली ते उस परमात्मा नाल मिलन दा राह साडे जीवन दा मकसद दसेंदे इस शब्द दे नाल अज दी शाम दा आगाज़ करदे हां। मैं कौन हाँ, किधर जाना है पता नहीं, इंसान की है किधर जाना है पता नहीं। इस भुलेखे हनेरे भरम दे विच गवाचा बंदा अपने जीवन नू सुचज्जे बनाउण दे लई हथ पैर मारदा है। इन्हां हथ पैर मारदे जीवन दे विच अपने उस प्रेम नू, अपनी उस अंदरली ताकत नू, उस प्रभु नू, उस यार नू मिलन तो खुंझ क्यों जांदा है। बारह माह दे इस शब्द दे विच हर रुत दे विच उस प्रभु नू मिलन दी इच्छा, उस कायनात दा शुक्रगुजार शुकराना ते इस जीवन दा मकसद जीवन दे बड़े सही दिशा निर्देश मिलते ने। इस बाणी दा भोग जिन्हों कह लिए भी सार जिहड़ा मिलता है, जिन्ना जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे। पूर्ण उही है जो उस परमात्मा नू मिल जाता है। मनुख अधूरा है, इस संसार दे विच हर वस्त हर कायनात दे विच समा जाण वाली है। ये अपने आप विच पैदा हो के खत्म हो के फिर जज़्ब करके मुड़ पैदा होने दे जीव लंबे जीवन दे संघर्ष की निशानी है।